68 तीर्थ जे नहावे उतरे नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन्हां निहों लगा रब

कीचड़ आटा गिर परया किछु न आया हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभया साथ। बेसुमार अथा अगणत अतुल

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ली त्याई। फिर अंगद गुरति अमरदास त्रम दस हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई।

सीता श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद वाहे गुरु।

बाबा बीबी चंद जी के हथों ख्वाजा अनवर खान मारिया गया ते गुरु साहब ने अपने सिखां नूं लड़दे होए देख के जोश विच आया ते गुरु साहब आप मैदाने जंग विच होए आ क्योंकि गुरु साहब साडे कल्ले जरनैलां नूं नहीं लड़ाउंदे सी उन्हां मुगलां दी तरह आप दरबारां विच नहीं बैठदे सी जंग दे मैदान विच खुद जाया करदे सन हुण जदों छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जंग दे मैदान विच आया ते उधर कारे खां ने पंडित खां नूं ललकारिया कहिंदा बड़ियां बड़ियां डीकां मारदा सा बादशाह दे दरबार विच कि मैं गुरु नूं फड़ के हाजिर करांगा जा हुण जाके अपना कार्ज पूरा कर जदों पंडित खां हंकारिया होया गुरु नाल टक्कर लैण वास्ते देखो जिहड़े गुरु ने पालिया परोसिया होवे उस गुरु नाल टक्कर लैण वास्ते मैदाने जंग विच आया ते जदों अपना घोड़ा पजा के मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी मूहरे आया ते गुरु साहिब ने कहा कि पंडिया तू हंकार विच आ गया असी तैनू मारना नहीं चाहते सी असी तैनू अपने हाथी पालिया क्योंकि हत्थां ए पाले नाल कोई भी नहीं मार न सकदा मैं को उदाहरण दे दा वैसे समा नहीं जिस तरह एक किल चाहे ग्राम दी होवे लोहे दी किल ग्राम भार होवे पानी विच छुट दे पानी विच सुट्टण ते डुब जाएगी किसे लकड़ दा बड़े तो बड़ा टहना मोसा सुट के देखियो पानी दे विच तरदा क्यों तरदा जदों आपां कोई बूटा जां दरख्त लाउने आ सब तो पहला पानी पाने हुण उसे पानी ने अपने पाले हुई लकड़ नूं किते डुबण नहीं दिंदा ते गुरु साहिब भी कह रहा कि तैनू हाथी पालिया सी तैनू मारन दा दिल नहीं करदा पंडित खान हकारिया होया ते गुरु साहिब ने कहा चल कोई गल नहीं जे अज मैदाने जंग विच साडे सामने आई गया तां वार कर पहला वार करन लई आख्या तां पहला वार कीता जदों अपनी कृपान दा पंडित खान ने गुरु साहिब दे रकाब ते जाके लग्या ते चमकाड़े चमकारे निकले इतिहासकार लिखदे आ कि इस तरह लगदा सी जिवें पंडित खान दी कृपान गुरु साहिब नूं सिजदा कर रही है हुण जदों दूजा वार कीता गुरु साहिब कहिंदे दूजा वार कर दूजा वार कीता तां गुरु साहिब ने ढाल ते रोक दिता गुरु साहिब ने आए रोह दे विच कहण लगे कोई गल नहीं पंडिया तीजा वार कर जदों तीजा वार कीता गुरु साहिब ने वह भी ढाल ते रोकिया ते पंडित खान की कृपान दो फाड़ हो गई जदों हुण नेता आया गुरु साहिब कहिंदे कोई गल नहीं इनू माण बड़ा सी एक इनू दा गुरु साहिब ने सिखाया सी के घोड़े सने जंग दे मैदान दे विच पटका के बंदे नू मारदा सी सने घोड़े एडा वड्डा ताकतवर जरनैल सी और जदों इने ओही दा गुरु दा सिखाया होया दा गुरु ते वरतण लई घोड़े तो थले उतर के अपने दोवें मोढे गुरु साहिब दे घोड़े नू लगाउण लई चक्कण लग्या पर चक्या नहीं गया गुरु साहिब ने कहा पैंदिया कोई गल नहीं तेतों नहीं यह कार्ज होना और जदों तक घोड़ा ना चक्या गया गुरु साहब इनू कहन लगे तेनू एक बार कराया दो कराए तीन कराए तेरे बार खाली गए पैंदिया बार इंज नहीं बार इंज करीदा गुरु साहब ने खब्बे हाथ विच पकड़ी हुई ढाल पैंदे दे सिर ते जोर

0: अरे तो एक करता पीत पसम संग होए
1: अंधकूप में पतित बिकराल नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात
1: बाहर बेक अंतर मल माया छपस नाहे कच करे छपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान
1: अंतर अगन बार तन स्वा कल पाथर कैसे तरह अथा
0: जाके अंतर बसे

0: साध के संग लोकत हरे, साध के संग नरक पर हरे।
1: साध के संग या हुआ सुएला, साध संग बिचरा चर मेला।
0: जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना व्यर्था जावे।
1: पार ब्रह्म साध रीत बसे, नानक उतरे साध सुन रसे।
0: साध के संग सुनो हर नाम।

0: परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्श
1: तेरे की चरनी पाओ नानक मनसा
0: पूर्ण सरना जो जो कृपाया सोई हो
1: हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने
0: हो मंगल सजा के सर्व तोषणीय करता
1: राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपिस्तर ग्रस्त
0: मैं भक्ति सुख पाया नानक तिस प्रकार

0: सतगुर सिक्की कृपत बाल सेव गो गुर सदा दयाल
1: सिक्की गुर दुर मत मल हिरै गुर बचनी अर नाम उचरै
0: सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिक विकार ते।

0: जिसको प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवा गुरु की मतले
0: बीस बीसवे गुरु का मन मानने सो सेवा परमेश्वर की गत जानने
1: सो सत गुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुरु को बल जाओ
0: सर्वनदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग दाता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आम नहीं कच्छ भरम
0: सहस्यान ल्याना जाइए नानक कैसा गुरु बड़ पाकी पाइये।

0: तत्पाई चुके ब्रह्म गवन सुनान खर हर जसरण
1: सरगुण भी ओई कलाधार जिन सगली मोई
0: अपने चित प्रवया बनाए अपनी कीमत आपे पा।

0: अष्टपदी
1: संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार
0: समित बसारो चरण कमरद में
1: चरण कारण तो प्राप्त समरत दृढ़ कर गौ नाम हर वक्त
0: संचो हो पवन संजना का निर्मल मन
1: एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए
0: जिस को चार कुंड तावे सो तनहार सेवा ते पावे
1: जिस सुख को निज बात छेमी सो सुख साधु संग परी
0: शोभा को करे पली करनी सोभा पज हर की सरणी
1: अनेक उबावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद
0: सर्व न दान मेरा नाम न दान जब नानंद दरगह प्रवान

0: जाप अष्टपदी जब अकार कृष्णा दृष्टि तापा पुंतो कहते होता
1: जब दारी आपन सुन समात बैर विरोध की संकमात
0: जब इसका ब्रंचन जापत तब हर शोक से व्याप्त
1: जब

0: जब केर गम पार तब नरक सुर को कौन तार
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी जोत रे तब कौन निडर कौन करत रे
1: अपन जगताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को का विनाशन
1: जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब गत गोचर प्रभ का तब चित्र को बुद्ध किस पीछे
1: जब नाद

साहिब जी, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले, ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत कै अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी, साध संगत कै अंचल लावो, बिखम

हो गई उन्हूं महाराज ने की क्या अपर्श अपर्श जिन्हों विकार स्पर्श नहीं कर सकते वो निर्लेप हो गया उदे अंदर काम क्रोध लो मोहंकार दा असर नहीं है अपर्श परश मतलब होंगे छूना स्पर्श करना स्पर्श कहने छून नू अपर्श कहते जिन्हों छू ना सके जिदी ये अवस्था बन गई है वह फिर उदे अंदर कोई किसी प्रकार का विकार उनू अंदरों छू नहीं सकता उदे अंदर केवल नाम रस बनेगा कोई होर रस नहीं उदे अंदर बन सकता इसलिए महाराज कहिंदे ओह अपरस सगल निस्तार है जिहड़ा अपरस हो गया ना आप विकारां तो मुक्त हो गया वह फिर दूसरियां नूं भी मुक्त करदा है जिहड़ा आप तरेगा वह दूसरे नूं भी तारेगा जिहड़ा आप डुब गया वह दूजे नूं भी डुब देगा क्योंकि डुबदा तो डुबेगा पर जिहड़ा नाम की कमाई वाला है वह आप भी तरदा है तो जिन्ने भी उहदा संग करन वाले सगल निस्तारे वह सारियां दा पार उतारा कर दिंदा है वह आप भी मुक्त हुंदा है ते होरां नूं भी मुक्त करदा है इसलिए महाराज कहिंदे सतसंग दे विच बैठ के परमेश्वर दे नाम नूं ध्याया करो ताकि सतसंग दे विच बैठिया एक भी जुड़ गया ते उहदे जुड़े दे सदके होर पता नहीं किन्नियां ते किरपा हो जाणी है लकड़ आप तरदी है पर किन्नियां नूं नाल तार दिंदी है लोहा डुबेगा ते होरां नूं भी डोब देगा लकड़ तरदी है ते होर माड़ियां दा संग डोब देगा चंगियां दा संग तारदा है किन्हां दा जिन्हां ने नाम दी कमाई कीती है वो आप भी तर गए होरां नूं भी तारदे ने आप भी मुक्त हो गए ते होरां नूं भी मुक्त करदे आ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार इस वास्ते महाराज जी कहिंदे जिन्हें नाम धारण किया उदे अंदर परमात्मा दे नाम दी बख्शिश होई वो चारे पासे उस परमेश्वर नूं देखदा महसूस करदा है और वो विकारां तो मुक्त हो जांदा है और आप भी तरदा ते जिहड़े उहदी संगत करनगे वह भी तर जाणगे इसलिए संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो सानू महाराज जी इस श्लोक दे राही नाम दी कमाई करन वालियां दी संगत करन वास्ते प्रेरदे आ कि जिन्हां ने नाम रंग विच रंगना कीता उन्हां दी संगत करोंगे तां तर जाओगे जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास धूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास समय दे अनुसार इस श्लोक दी विचार किते साडे मनां दे विच वस जाए अरदास करो कि महाराज बाणी पढ़दियां कीर्तन सुनदियां पाठ सुनदियां जां पाठ करदियां एक शब्द एक अक्षर ही साडे मन दे विच वस जाए ते असी हर पासे महसूस कर सकीए कि वह परमेश्वर हर थाएं है हर वेले है हर वक्त वह मेरे नाल है असी ये महसूस जिस दिन कर लांगे उस दिन लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले जीवन बन जाएगा गुरु महाराज सारियां दियां हाजरियां लेखे दे विच लाउण आप भी जुड़ो होरां नूं

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत।

कृपा दृष्ट तन जाय न हर हो ताके ताप तनक म हर हो हृदय सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट सा

बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती

मेरे साहब ने कहा किश ना सुझे किश ना बुझे दुनिया, बड़ा घट बोलते हो फिर ते नहीं पता कुछ लग। बार बार बार प्रभ जपिए, बोलो बार बार सौ सौ जप दिन राती। जे इत्थे आण के कुछ क घड़ियां जे बार बार जोर ला दो ना कितें ते 24 घंटे दूसरे जड़े ने बड़े आराम ना लंघणगे। बाणी जान दो अंदर, बाणी अमृत है, अमृत बाणी हर हर तेरी। महाराज हुणे कह के हटे। मेरे साहब जी कहिंदे किश ना सुझे किश ना बुझे दुनिया गुझी। बाजारां दे बाजार अग लगी। आ पंजाब विधानसभा जिन्ने बंदे अंदर बैठे सारे नूं अग लगी। वो उन्हूं वेख के नहीं जाता, उन्हूं वेख के नहीं जाता, उन्हूं कहिंदा तैनू मार देना, वह कहिंदा तैनू मार देना। उत्थे चुण के लोगों ने तां भेजे भी भला करो, दुनिया का भला करो, आखो वाहिगुरू। मगर उन्होंने भी अग लगी। उच्ची क्या करो, डरो ना किसी नूं। मैं नहीं बैठा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च, वो बैठा सिर ते लैण नूं गल सारी। जो गल नहीं उहदे तों बाद कर रहा, आखो वाहिगुरू। जलन बुझी, मालक की बाणी, गरीब नवाज पातशाह की बाणी सुनी ते जलन बुझ गई, अग बुझ गई। सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का दर्शन। ओ उत्थे एक बंदा आ गया बूहे दे अगे, उहनूं लगी पैरां तों लैके सिर तक अग, आखो वाहिगुरू। इत्थे आण के तक भी वेंदा रहा ते उहदा अपनी अग वल ध्यान रहा, गुरु वल ध्यान नहीं आया। पहलों तो जे गुरु देखना जे ते अग बजाओ अंदर दी, वाहिगुरू।

एक मन एक चेत होके जपोक दे अंदर चल जाए, कणी कणी अमृत दी अंदर चल जाए, अग अंदर या बाहर नहीं। आखो वाहेगुरु, साध वाल वेख के साध सड़ रहे, कलर्क वाल वेख के कलर्क सड़ रहे, मास्टर वाल वेख के मास्टर जड़। महार पातशाह कहिंदे ने जिहड़े वख वख ए जिन्ने ने ना, वखरे वखरे ए जिन्ने महकमे आ, वह भी रो रहा, वह भी रो रहा, वह भी रो रहा, अग लगी। वरना वरना वर्ण न भावनी, वरना वर्ण न भावनी, पता लग रहा रुमाल वाले पुत नूं, तुहाडे पिछे बैठे नूं अगे कर दूनी ते मेरे वो पिछे अगे आ जा, इत्थे मेरे कोल आ, खाली जगह। आखो वाहेगुरु, वरना वर्ण न भावनी, इधर ध्यान दिओ, वरना एक कलर क्या किसे महकमे च। आखो वाहेगुरु,

आखो सतनाम श्री वाह। एक बार मैनू दसो भी जिहड़े गुरप्रीत सड़क दे उत्ते ना जिधर नू ट्रैफिक जा रही उहदे तो उल्टे आ रहे होंदे कुछ लोग, कुछ कुछ कितने लखां चों इक वेखे उबड़े सिर च भी कट्टा पिया, पैर च भी कट्टा पिया, वो जे अज मेरा पंथ रोंदा फिरदा। जे तरह बहुत गरीब बंदे दियां लीरां लमकदियां फिरदियां, साडे कपड़िआं दियां लीरां नहीं, मगर असीं रोंदे फिरदे हां। कल दा काल फिर सानू नज़र आ रहा है, अख वाहिगुरू पता लग गया जी, कल दा काल मृत हसे, बोलो सारे बोलो सिर उपरे। इहदा की अर्थ बनिया? काल तुहाडे सिर दे उत्ते हस रहा, मृत हसे सिर उपरे, पशुआ नहीं बुझे, ये पशु बंदा बुझदा नहीं। बाद साद अंकार में मरना नहीं सूझे, बाद वाद विवाद सिखा च की है, हुण वाद विवाद ही है ना, 24 घंटे लगा। साद मच्छियां मुर्गे इत्थे जाके लुधियाने वेख लो यार, शर्म करो किते। गुरु साहब ने अपना नू अमृत भोजन आख्या, अमृत भोजन खाओ मेरे भाई। अख वाहिगुरु बाद साद स्वासवन स्वाद, बाद साद अंकार मैं मरना नहीं बूझे, इन्हां नू मरना ही लोगों नू भुल गया। गुरु के सिखो सादा भोजन खाना आपां। अख वाहिगुरु आ मेरे नाल छोटा पचंगी रहिंदा, एक कल मेरे नाल सैर करदा कहिंदा भी खालसा जी ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मास दी खुल देती सी, देती सी ना पता जे कि नहीं, तुहाडे चो किहड़े किहड़े नूं पता, हुक्मनामा जारी करता भी सिख मास खा सकदे आ क्योंकि कौम कमजोर हो रही। ये मैनूं कहिंदा भी हुण बगड़े बगर छेव बन गए मास खाण वाले, गुलामी तां दिनों दिनों फेर पै रही, किन्नियां क जंगां जित लईआं जे, बकरे वढ़न वालिआं ने किन्ने सिंघ सिर वढ़ते उहनां लोकां दे जिन्हां गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी कीती। ओह भाई नाम दा बालिआ सिख दे अंदर, जिन्हें हाथी दे अंदर वर्षा बाड़िआ सी ना वह मास नहीं सी खांदा, उहदीआं बाहवां दे विच गुरु की बाणी दा बल सी। बाणी पढ़ो, वाह गुरु।

ऐसा होया भी जिहड़े चपहरे कट्टण वाले ही वह बाबा शहीद बाबा दीप सिंह दे भीड़ां लगियां ते दरबार साहब तुसी जाओ ना शाम दे वेले किसे जां किदन वी उत्थे जो बंगाल तो बंदा आया इधर देवियां दे दर्शन करन बार्डर वेखण अख वाहिगुरू साड़ियां वालियां टिक्कियां वाले लोकी इधरों जिहड़े माता जी दे दर्शन करन आए उधरों आए इधरों आए सारे सारे रात नूं उत्थे आउंदे मत्था टेकन नूं लैणा लगियां हुंदियां मगर धन गुरु ग्रंथ साहब तो डर के कहना कोई पांच सिख होणगे लैन दे विच सिखां नूं धक्क के बाहर लैण दा बाबे दीसों कोल चलो जी उत्थे तुसीं चलो ते जो फोल के वेंदिया ते विच्चों अद्धियां दे जेब दे विच्चों तंबाकू निकलदा जागो मैं तो आप जी नूं जगाउण लई हत्थ जोड़ना मैनूं पैसे दी ते जरूरत कोई नहीं ना मैं पैसा लैणा ना कि सतगुरु धन गरीब नवाज मैनू योजा कदे दिन आवे मैं हथ के अड के किसी कहा मैनू भेटा दो ना तुहाडियां आसीसा जो तुसी वेख रहे हो मेरे वाल गुरु गोबिंद सिंह वेख रहा सब घट गोबिंद ही वसन डिया भुला ना चतारियो जी आसीस बख्शो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।

तेरी मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरियारी गुरु नानक जिनी सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी। डिठे सबे था नहीं तुद जेहा, बद्धो पुरख विदाते तू सोहिया। सो कहो टल गुरु सेवियै अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, जैतसरी महला पंजवां कर तीजा।

जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बधाई तोय राव विश्वे चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द व जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए सिदे चानन सब मैं चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए अर चरण कवल मकरंद लोभित मनो।

साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है राव साकत हर रस साधना जानिया तन अंतर होमे कंडा है ज्यों ज्यों चले चुवै दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे सुखमंडा है रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टैल की बेला इहो खाट चलो अरलाह आग्या बसन सुहेला आउद कटै दिन सरेणारे मन गुरमद काज सवारे रहाओ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵੈ ਇਹ ਰਸ ਕਤ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜ ਜੋਵਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਸਹਿਜੇ ਬਹੁ

समरथ सब विद कुल है समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अलप सुख बंदन।

खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत

रोग ग्रस्यो जमदूतन डन मृत मरयो है। दह दिस अनिक जोन नरक संकट अनिक जोन संकट नरक पुंचत। शासन दुख गर्त गरयो है। प्रेम भगत उदरे से नानक कार कृपा संत।

क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिनस जाए हर नाम उचारी। इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभतारी। साजन मीत सखा हर बंद।